एलजी ले ले आयो नया एलजी एसेंशियल सीरीज अब किफायती मूल्य में रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन एसी को कंप्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी लाइफ्स गुड।

वॉशिंग मशीन एसी को कम्प्लीट रेंज 10 वर्ष को वारंटी सहित 0% नो कॉस्ट ईएमआई नागरिकता भए पुग्छ हर एक घर को खुशी घर घर में एलजी एलजी।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: Toilet Pony, extreme energy drink.
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज़।

0: करता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: रेडियो दीदी बहनी 95.2 मेगाहर्ट्ज हामी सबैको साझा आवाज।

0: अर्कैलाई मन पराएर मलाई तडपाएर दाङका उदयमान नक्षत्र तीर्थक हस्पी पवन विरही पाण्डेको एक तीर्थकता अब शब्द शब्दमा
1: अर्कैलाई मन पराएर मलाई तडपाएर
0: सीआरबीटी नम्बर 01300044 29 पीआरबीटी नम्बर 7045 16 52 स्वर नरेन्द्र प्यासी संगीत सन्तोष श्रेष्ठ गीतकार एसएन पाण्डे पवन मोबाइलमा सीआरबीटी र पीआरबीटी डाउनलोड गरी

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले मध्याह्नको ठीक 12 बज्यो।

0: समीचो चौदह के में बोधे लोटी पढ़ी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिखे हमरो
1: खै खै बहु कोई लोटी बढ़ दिलवा
2: आंगी समीचो लोटी पढ़ती हूँ छापता ही गुरी
1: बढ़ दिया बढ़ दिवा लोटी खाले पढ़ दिम बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक बाइबर खाने बनी खै बिसा खै मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खै मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खै मई आरी सुनिए बैंक आप ही बनी आरी
3: सिद्धार्थ
2: बैंक क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरिलाई
5: निकट मा दिदी बहिनी विकट मा दिदी बहिनी यो रेडियो दिदी बहिनी।

0: सामाजिक सञ्जाल जी छ्यानले जाँचीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन अधिकारिक प्रोफाइल मात्र फललना खैबै बिनी लिङ खुल्दिउ भन्दा उइसु सुखन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामु बिमारी छ्यानले खोना दे खुल्दिगो वेबसाइट ना URL चेक लना आक्षेपक घटना तल आपिबै लागि समय समयरी आफैन पासपोर्ट फेरदिल परिमो नुए तोय तारी शंख लैदी विषा बैंगरी यही मरी तुरन्त खबर लना
1: सतर्क तन ठगी तबद क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैंगर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँ भरिलाई
4: निकटमा दिदी बहिनी विकटमा दिदी बहिनी।

0: समझियो जो दाके में बोदे लोटी पड़ी रो बैंगे ने विवरण पी भी है मुई खाता लिख खाई हमरो
1: खाई खाई बाऊ कोई लोटी बढ़ दिलवा
2: आंगे समझियो लोटी पड़ी हूँ छांता ही गुरी
1: बढ़ आ बढ़ दिवा लोटी खाली पड़ दिम बा सही मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक बाइबर खाने बने खाई बिसा खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बने वित्तीय संस्थे कोई पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुनिए बैंक आप ही बने आरी
3: सिद्धार्थ
2: बैंक क्या रे जन हिजरी जारी संदेश
4: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरी लाई
5: निकट मा दीदी बहिनी विकट मा दीदी बहिनी योहो रेडियो दीदी बहिनी।